0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Rick veut vous donner un gros coup de main pour votre déménagement avec le Grand Solde. Économisez jusqu'à 33% de rabais sur les sofas et les sofas sectionnels. Jusqu'à 20% de rabais sur les meubles de chambre à coucher et de salle à manger. Jusqu'à 40% de rabais sur les matelas sélectionnés. Et modernisez votre cuisine. Obtenez jusqu'à 15% de rabais sur les gros électroménagers sélectionnés lorsque vous en achetez 3 ou plus. Plus, vous pourriez gagner l'un des 4 articles de la collection Shaq et O'Neill Home. Aucun achat requis. Certaines exclusions s'appliquent. Détails en magasin. Déménagez et économisez gros chez Brick. Plus d'économies pour vous.
2: एक अच्छी स्मार्ट जिंदगी के लिए कुछ नुस्खे यूं हैं कि तलब महफिल है तो तन्हाइयों को गले लगाना सीख, है जीना गर तो खामोशियों को गुनगुनाना सीख, इरादे आजमाने चाहता है घर अपने तो बस्ती छोड़ साहिल पे घरौंदों को बनाना सीख, नहीं आएगी खुद चल कर तेरे दर पर ना यूं ही बैठ, तमन्ना गर है मंजिल की कदम राह पर बढ़ाना सीख, कौन बुरा है और कौन अच्छा एक दिन खुद ही जान जाएगा, रिश्ते आजमाने से पहले तू खुद को आजमाना सीख, मिलेगा पत्थरों में भी खुदा ढूंढेगा जो दिल से, तू सबसे पहले गुरूरे सर हटाना सीख।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: हालात कुछ भी हों, फिर भी जिंदगी को सलाम करें। अपने बच्चों के लिए बड़े बड़े घर, गाड़ियां या बैंक बैलेंस छोड़कर जाने से अच्छा है कि अच्छे कर्म करने का जज्बा उन्हें विरासत में दे। जुगनू से अंधेरों का ना यूं एहतराम कर, सूरज को बुलाने का कोई इंतजाम कर। आएगा किनारा भी क्या तूफान से आगे, बैठे हैं सभी लोग यहाँ दिल को थाम कर। कुछ कर कि जाग उठे तेरा सोया हुआ जमीर, आवारगी का बज्म में ना सुबह शाम कर। उगते हुए सूरज के कदम चूमते हैं सब, तू डूबते सूरज को कभी सलाम कर। बच क्या गया है, लिख रहा है तू जो वसीयत, अच्छे कर्म अच्छी सोच अपने बच्चों के नाम कर।

नहीं ढूंढते नहीं, पर हम में से हर एक में लीड करने की, इंस्पायर करने की क्षमता है। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी किसी और दुनिया के थोड़ी ना थे, हम में से ही तो हैं। कभी कभी हमें अपना काम छोटा लगता है, हमारा योगदान इनसिग्निफिकेंट सा लगता है। हम सोचते हैं कि हमारा ये छोटा सा स्टेप कैसे बदल सकता है सब कुछ। मत याद रखें, हर सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। सो बिगिन विद वन स्मॉल स्टेप एंड डोंट लेट अदर स्टैंड इन योर वे। अपना रास्ता खुद बनाएं, और ये भी याद रखें कि हर कोई आपका साथ नहीं देगा। कुछ लोग हंसेंगे भी आप पर, बट सो व्हाट। जहां कुछ लोग आपका मजाक बनाएंगे, वहीं बहुत से लोग आपको फॉलो भी करेंगे। सो डोंट गिव अप। प्ले द गेम ऑफ दिस लाइफ ग्रेसफुली एंड लिव वेरी वेरी स्मार्टली।

कहते हैं जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। सो बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। नेगेटिव बातें सोचेंगे तो चाहे नेगेटिव कुछ होना हो ना हो, पर हो जाएगा, क्योंकि आप खुद बुलावा देते हैं नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में नेगेटिव बनकर। और साथ ही साथ ड्रीम्स को, ख्वाबों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। ड्रीम, ड्रीम बिग, फील इट, बिलीव इट एंड देन फाइनली अचीव इट। जैसे भी हैं उनको फॉलो करें, चेज करें, आप खुद तो एक अजीब किस्म की खुशी महसूस करेंगे ही, औरों को भी आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। सच में ऐसा होता है, आप किसी भी कामयाब इंसान की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो वो आप पर एक छाप जरूर छोड़कर जाएगी, कुछ बढ़ने की, आगे बढ़ने की।

0: कल्चर ऑफ पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: अच्छा, अगर हम एवरेज 70 साल तक जीते हैं तो आपको पता है कि अपनी लाइफ की डिविजन कैसे होती है। करीबन 25 साल तो हम सोकर गुजार देते हैं, 8 साल पढ़ाई करने में, 6 साल आराम करने में या यूं कहें कि बीमारी में, 7 साल टीवी देखते हुए या हॉलिडे पर, 4 साल खाने में, 5 साल सड़कों पर, घर से काम, काम से फिर वापस घर। तो बचे कितने? करीबन 12 साल। सिर्फ 12 साल, यही टाइम, यही साल है जिसमें खूब सारी मेहनत करनी है हमें। और अगर ये टाइम भी हाथ से गवा दिया हमने, देन डोंट यू थिंक वी हैव लॉस्ट नियरली एवरीथिंग? वेल, सोच कर देखें, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, जिसे शेयर किया मैंने यानी प्रीत ने आपके साथ आपके अपने शो कल्चर ऑफ पंजाब में।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ ਪਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ
4: अच्छा जब आप और हम कॉलेज पास आउट करते हैं ना तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा टारगेट होता है जॉब ढूंढने का. कई बार हमें एक बहुत बढ़िया जॉब मिल भी जाती है बट स्टिल एक क्वेश्चन मार्क सैलरी इतनी कम क्यों. वरना एक बात हमेशा याद रखें कि एट द बिगिनिंग ऑफ योर करियर व्हाट यू लर्न इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू अर्न. जो आपने अपने करियर की शुरुआत में सीखना है वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय इसके कि आप अर्न कितना कर रहे हैं उस टाइम. तो जी इसलिए एक्सपीरियंस गेन करें काम को दिल लगा कर सीखें तो सैलरी ने तो खुद ब खुद पीछे आ जाना है.

0: ਕੁੜੀਏ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇਖੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।
1: ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
2: ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ।
3: जब तक आप ये यकीन नहीं करते कि जौन सा काम आप कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे बढ़िया काम है, आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। और इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा टिप है। अच्छा, ऐसा करें, दिल को अपने काम में बसा लें और काम को अपने दिल में, फिर देखें रिजल्ट कितना कमाल का होता है। मेरे को पता है कि आपने ऐसे तो मानना नहीं है, चलो ट्राई कर लें, हर्ज भी कोई नहीं है।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ।
3: कुछ दिन पहले मैंने पेपर में हमारी फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर और मैगसे अवार्ड विनर किरण बेदी का एक आर्टिकल पढ़ा जो खास कर पेरेंट्स के लिए था एंड वेरी स्पेशली फॉर द पेरेंट्स ऑफ डॉटर्स बेटियों के माँ बाप के लिए। उसमें एक बहुत टचिंग सी बात लिखी हुई थी कि जब भी किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो आंखें खोलते ही अपने माँ बाप से अपने दादा दादी से नाना नानी से सबसे एक ही सवाल पूछती है, Am I welcome in the family? क्या मैं आपका गुरूर हूँ या आप पर बोझ हूँ? और ये पेरेंट्स ही हैं जो उसे सहारा दे, उसकी ताकत बन सकते हैं आगे बढ़ने में अच्छी एजुकेशन देकर। किरण बेदी कहती हैं कि वो एक छोटे से शहर अमृतसर से हैं जहाँ जरूरत है उनके अपने पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स की, हजारों लाखों की संख्या में, जो खास कर अपनी बेटियों की एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें और उन्हें समझा पाएं कि किताबें सोने चांदी की ज्वेलरी से बहुत ज्यादा कीमती है, जो उन्हें ऐसी जिंदगी दें कि फिर कोई बेटी ये दोबारा न कह सके कि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजिए।

एजुकेशन की बात हो, तालीम की बात हो और किताबों का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। किताबें कागजों पर जिंदगी के मायने छपे हुए, किताबें जो हमें सलीका सिखाती हैं जिंदगी जीने का। और कोई आपके साथ हो ना हो, किताबें हमेशा आपका साथ देती हैं। उदास हो तो खुश कर देती हैं, घर के एक छोटे से कमरे में बैठे बैठे दुनिया की सैर करा देती हैं। अच्छा, अप्रैल में बीबीसी बिग रीड ने एक सर्च शुरू की बेस्ट लव्ड 100 नॉवेल्स की। द वन विच वॉज मोस्ट लव्ड वॉज द लॉर्ड ऑफ रिंग्स। दूसरे नंबर पर जो किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है आज भी यूके में, वो है जेन ऑस्टन की प्राइड एंड प्रेजुडिस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन 100 किताबों में इसकी जो लिस्ट है उसमें से हमारे इंडियन राइटर्स भी पीछे नहीं है। नंबर 55 पर स्टैंड स्टॉल विक्रम सेठ्स बुक अ सूटेबल बॉय, एंड एट नंबर 85 इज अरुंधति रॉय इज द गॉड ऑफ